0: बस एक औरत है। हा इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगता है ए जंग करना जान दी है, पर मैनू नहीं हरा सकती।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते भारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि वो कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान तार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस ये कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वह मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहलां तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निघी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया, ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया तां तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो सिखी विच रह के।
4: उदों जिन कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रां नू अपने सामने प्रगट होंदे देखदी है, उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां, ते तुहाडे लोड दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुकियो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौण हो।
3: मैनू नहीं लगदा कि मैं दोबारा करजी दरांगी।
5: हा हा हा, शाबाश। पर जे तुहानू कदे डर लगे भी, उदों समां है योधियां दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओह कीहड़ी वार है?
5: हा हा हा, साडे कोल बहुत सारियां वारां ने।
1: मैनू लगदा है इस समें ये वार साडे गाउण दे लई बिलकुल ठीक है।

0: All other kings are false. They rule for but a short time. Your rule is forever. Wash away my karmas. Bring me into your house of light. It is you who gives true protection. And it is you who saves.
1: Jahangir looked around and he said,
2: "Whoa, this man wants me to bless his soul and to save him from spiritual darkness. I do not have that power. How can I save his soul? Why, I can't even save my own life."
1: Well, in that moment, he saw for himself that it was only because of the love of the six that the Guru is called the true emperor. And he admitted to the grass cutter,
2: "I am not the true emperor. I am a false king. The true emperor is over there."
1: And he pointed to where the Guru's tent was, and the grass cutter picked up his penny and he ran to where the Guru sat.
0: "Oh, my sweet Guru, may I be at your feet."
1: And Guruji blessed him.
3: "Oh, my beloved Sikh, my brother, always be sweet and humble in your words and in your actions. Love everyone and hate no one. Work honestly and share whatever you have. God is with you every moment of your life. Remember God in every moment. Obey the teachings of the Guru. You will be happy in this world and in the next world."
1: Well, all kings, rulers, and emperors are under God's power. So recite the name of God and become satisfied this way. Be around the saints and find God within.
4: Well, that was a really good story. Do you want to listen to another one? Whenever we take a trip, we listen to SeekNet stories in the car. You can get CDs at SeekNet.com/stories.
5: Sikhi di e nishani. Shabad Guru Ram Das ji. Vyakhya Jagdeep Singh. Chitrakar Pardeep Singh.
6: Simar Singh, Kirpa Kaur, utho utho. Ki tuhanu vadhiya neend aayi?
7: Akhirli cheez jehdi mainu yaad hai, mummy ji ne karo binanti. Gona shuru hi kitta si, te mainu neend aa gayi.
8: Ajit Vir ji, mainu bada changa lagda hai jadon tusi mainu jagande ho.
6: Aao vekhiye पहला कौन स्नान करके पाठ करन लिए तैयार हुंदा है।
7: मैं जित जावांगा।
8: मम्मी जी, की मैं बबल पाठ ले सकती हूं?
6: आओ पहला सिमरन करिए, फिर कृपा कौर तुसी आज जपजी साहिब करो, मैं जाप साहिब करांगा। सिमर सिंह तुवे प्रसाद सवाइये करेंगे।
7: मैनू बहुत भूख लगी है। आओ छेती छेती पाठ करिए ताकि मैं नाश्ता कर सका।
8: कि मैं अरदास भी कर सकती हूँ?
6: आओ अनंत साहिब करिए,
7: मैं उच्ची उच्ची गावांगा।
8: मैं हर वेले कीर्तन सुनना पसंद करती हूँ।
6: वाहेगुरु जी दा शुकर है जिसने बास्केटबॉल दी खेड बनाई है। मैनू बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है।
7: शुकर है मेरे कोल एवेजे बूट हन। मैं किन्नी उच्ची छाल मार सकदा हां।
8: मैं शुक्र कर दिया कि मेरे कोल तुहाडे वर्गे वीर हन।
6: ओ वेखो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पिछे पंच प्यारे खड़े हन। आओ ध्यान नाल हुक्म सुनिए।
7: मैनू उना दिया वड़िया किरपाना बहुत चंगिया लगदिया हन।
8: एक दिन मैं भी पंज प्यारियां विच शामिल होवांगी।
6: इस शब्द विच एह सिखिया मिलदी है कि सानू वाहेगुरु नू सदा याद रखना चाहिदा है।
7: चलो सारे इकट्ठे शब्द गाइए।
8: मैनू तबला बजाना बहुत पसंद है।